बिराई क्यारे भंचु फिराए राय पादे रे माए न फोटो छिनेर जाओ श्रेष्ठ समा कई डोरे हम्रो मा

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैठे भी थप्लो 7 MHz बाट मद प्रसाद साहबकोट आज विक्रम संवत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जून 29 तारीख आषाढ़ 15 गते सोमवार पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा को व्रत पनि हो आज अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पयारी।

नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाय नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समय।

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल जस जो दायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानी के सुनिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिम्रो उजागर, रामदूत अजुल दबलधाम, अञ्जनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति की संगी, कंचन वर्ण विरास वेश, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरजौ ध्वज विराजई, कांधे मुझे जने साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगा दरवाया, भीम रूप दरी असुर संहारी, रामचंद्र की काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपती कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज बदन तुम्हारा जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, एम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव कि ना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मधु फल जानु, प्रभु मुन्द्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर्जन आई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रखसे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर्षव पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, इनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता, असवर दिन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रव रघुपति दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से ही सर्व सु करई, संकट कटई मिर सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सना हरि चेरा, किजनाथ हृदय मोहडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवं स्वरूप शिवर रामचंद्र शंकर जी वजह। जय हनुमान, जय बजरंग बली।